बाबा नामा अभिधान साथे ओ रखू अने एथी ज ब्रह्म स्वरूप शास्त्री महाराजना आदेश प्रमाणे आ नामाभिधान ज यावत चंद्र दीवा करो कायम रहेशे।

स्वामीनारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। સૌ સાથે મળીને આપણે હાથ જોડી સ્વામીશ્રીની સ્મૃતિ સાથે શ્લોકગાન કરીએ।

आव्याक्षर धाम थी अवनीमा ऐश्वर्य मुक्तो लई शोभे अक्षर साथ सुंदर छबि लावण्य ते जो मई करता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपाणु ने नित नमो सर्वावतारी हरि शोभो साधु गुणे सदा शरण ने झकते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयनी कृपा तणु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जचो नारायण स्वरूप दास गुणी ने स्नेह ज वंदु अहो श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय।

स्वामीनारायण भगवान ने जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने जय भगत जी महाराज ने जय शास्त्री महाराज

छत्र चामर शीर ऊपर शोभे, हारे आगे अगणित भाजा वागे। हे महाराज घोड़ा पर विराजमान हो, माणिक चौक में मलपतारे उड़े छे बिल गुलाल, वाजते गाजते महाराज ने उभा नगरवासी प्राणवारे। महाराज ने स्नान करवा माटे जवानो रूट रस्तो पण एक छे अने समय पण निश्चित छे। जे समये महाराज सवारे वेली सवारे निकले ने, ग्राम्यजनों पोताना घर धंधा काम बधु छोड़ी अने अगाशीए अटारीए पोताना घरना आंगणे आवीने उभा रहे अने महाराजना दर्शन करे। आवी रीते वाजते गाजते महाराज खेला नदी नी अंदर स्नान करवा माटे जाए, अने खेला नदी नी अंदर महाराज स्नान करवा माटे जाए त्यारे आपणे दररोज एक स्मृति करीए छीए ने।

महाराजनी जय, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, दिल्ली अक्षरधाम महोत्सवनी जय जय जय। सर्वप्रथम अपने सौ हाथ जोड़ी